दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को। एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

हप्ता से तिहार में Xiaomi व Redmi को लेटेस्ट फोन किनी MI स्पेस IMEI नंबर टाइप करी WhatsApp मार्फत पठाउनु होस् र हर एक दिन 8 जनालाई Redmi Watch 6 Play हर एक हप्ता 10 जनालाई Redmi Watch 6 Active अनि बम्पर मा 4 जना विजेतालाई Thailand Holiday यो योजना मंसिर 9 गते सम्म मात्र आजै नजिकैको Xiaomi डिलरमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

0: ihramechap@gmail.com।
1: हिंसा मुक्त समाज निर्माणमा हाम्रो साथ एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र रामेछाप अस्पताल रामेछाप।